रहा हूं। हर जन केवट पाग वडेरे, जन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले त्रिपता सै, मिल संगत गुण प्रकाश, जन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश, राग गुजरी महला पंजवां।

सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सोत बनता, कोई न किस की धारिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। उड़े उड़े आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दस हेठ सिधान, ठाकुर करतल दरिया।

सो पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन हरे अगम माया गामे अपारा सबत्यामे सबत्यामे तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तो घट घट अंतर

तेरे अनेक पढ़े बसमृत शास्त्र जी, कर करे आखट कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जे वड़े अवर ना कोई। तू जोग जोगे को सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई। तुझे आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करें सोई। तुझे आप

दूजा अवर न कोई। तो कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तेत सरवरडे पहिले निवासा। पानी पावक तने किया, पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तेंडू बियले, मन एक ना चेत समूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ओ ना हो जति सति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्राणवत नानक तन की शरणा, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते नकाम, मिल साध संगत पाज केवल नाम। सरन जाम लाग पाव जल तरण कै, जन्म ब्रेथा चात रंग माया कह रहा। जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कभे उबाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो। आप हान दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करे। सब बैरन को वासंगरे, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं। जोबर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सेखी हमारे तारिये। चुन चुन शत्रु हमारे मारिये, आप हां दे मुझे उबरे। मरण काल का त्रास निवरे, हुजो सदा हमारे पच्छा। सिरियस तुझू करियो रच्छा, राख लियो मोय राखण हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा। काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विशन प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जू थियो, चवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो। देव दैन जशन उपजायो, आदि अंत के अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी। सकल प्रजा जने आप सवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो। शत्रुन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर।

ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान काट काट के पट पट की जान जाबुद करख करा करतारा प्रजा तर तब दे पारा। जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेठ सब तार आपे अपने बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेदे रे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद्य नील अनाद्य असंभ। ता का मोड़ो चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपा हन न मानत महामोड़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आपे अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा कह बिन सजा प्रथम संसारा। एक रूप वन रूप स्वरूपा रंक पयो राव कई पूपा अंडज जेरज से तज कीने उत्पुज खान बहोर रच दीनी।

जब तो सुखिया लाख करोरी बांधना परे हर का नाम जब तने स्तरे अनक माया रंग तिखना बुझावे हर का नाम जब तिया गावे जे मार्ग के जाति के लाते हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मनसताते आइये नानक गुरमुख ब्रह्म गत पाइये छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार पराही अनेक बिघन जय आय संहार हर का नाम तत्काल उधारी अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हों मैला मल कबू न तोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध कै संग जे मार के गन जाहे न कोसा हर का नाम मुआ संग तोसा जे पैंडे महान दुगबारा हर का नाम संग गुजियारा जहां पान तेरा को नाम सुजानू हर का नाम ते नाल पछानू जय मां प्याण तब तबो काम ते हर के नाम की तुम्हें ऊपर शाम जहां त्रिखा मन तुझे आकर खै ते नानक हर हरे अमृत बरखै भगत जना की बरतन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस कर सन दिन रात हर हर औकत साध कमात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नोदान मान तन रंग रते रंग एक नानक जन के ब्रत विवेक हर का नाम जन को मुगत जुग तर के नाम जन को त्रवत भुगत तर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जबत कपर न पांग हर का नाम जन की वडयाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जबत कशनाय वियोग जन दाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मालिक सीना हर तन जन को वा प्रभु दीना हर हर जन के ओट सताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर सराते शुन समाध नाम हर समाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रकट नहीं छपै हर की भगत मुक्त भो करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनंदर दुख लथा नाम की महिमा संतर दवस संत प्रताप दुरत सुवन स संत का संग वड भागी पाये संत की सेवा नाम ते आये नाम तुल कशवर न हो ए नान गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहु शास्त्र व स्मृति पेखे सर्व टंडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम मोरे अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब त्यान कट चात्र समृत वखयान जोग अभ्यास कर्म धर्म करिया सकल त्याग बन मध्य फिर अनक प्रकार किए बोझतना पुन दान हो में बोरतना शरीर कटाय हो मैं कर राति वर्त नेम करे बो पांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिये एक बार नौ खंड प्रथमे फिरे चिर जीवे माँ उदास तपी सरथी वे अगन माय हो मत प्राण कन कशव है बरपू मदान न्योली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संजमियत साधन निमुख निमक कसी कटावे तो पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन सिर रात मन की मैल न तनते जादस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिख्या ट्रै जल तो वे बहु दे अनीत शुद्ध कां हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पटित बहु मोज बहुत सियान जमका पव बे आपे अनक जतन का तिशन ना त्रापे पेख अनेक अग्नि बुझे कोट पादर गाने से जय छूट सनाही उपे आल मोह बे आपे माया जाल एवर करतूत सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय स्त गावे जे को अपने शोभा लो रे सात संगे हो मैं शोरे जे को जन्म मरण ते डरे सात जना की शरणी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रदान सात संग जाका मटे विमान आपस को जो जाने नीचा सो उगनिये सब ते ऊंचा जा का मन हुए सगल कीरीना हर हर नाम तन काट काट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पे कह सगल श्रीठ साजना
सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक।

पहले अश्वदी जिसके अंतराज अपमान सो नर्कपाती हो वत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होत विष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गर्भावे त्रिन समान कर संग न जावे बहु लश्कर मानुख उपर करे आस पर पीतर धाका होए विनाश सब दया।

हौ रोग नानक सो जन सदा रोग। जो मंदिर कोथा में थमन त्यों गुरगा शब्द मन अस्थमन। जो पखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। जो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन दीख मन होई विकास। जो महा ध्यान मह मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै। तिन संतन की वाशो धूर नानक की हर लोचापूर। मन मूर्ख काहे बिल लाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है। दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू तिसे चितार। जो कुछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे जान। कौन वस्तु आयु तेरा संग लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे नानक पत सेती कर जाहे। जिस बखर को लै तू आया राम नाम संतन कर पाया। ताज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संत संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल। तन तन कह सब कोई मुख उज्जल हर दरगह सोए। ए व्यापार बिल्ला व्यापार है नानक ता कह सद बलिहारी। चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो। साध की तोहर करो स्नान साध ऊपर जाइए करवानो। साल सेवा बड़ भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए। अनक विघन ते साधु रख हर गुण गाय अमृत रस चख। ओट गही संतन दरवाया सर्व सुख नानक तय पाया। मृतक को जिवालन हार भूखे को देवता धार। सर्व निधान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाए। सब किश तिसका हो करने जोगा तिस बिन दुसर हुआ ना होगा। जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल है करनी। कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया। जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए तिलोए जा कै हृदय को हुए सच करनी। सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार सच वर्त साचा प्रसार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किश त्रह गुण ते प्रभ पिन। तिसे बजाए नानक जिस होवे सुप्रसन्न अष्टपति। अविनाशी ब्रह्मन महराख मानुख की तुम प्रीत आगो। तिस्ते परे नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे हे दाना गहर गभीर गहीर स जाना पार। ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरणी पाओ नानक मन एहन राओ। मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर। अंधरूप मंगल सद जा कै सर्व थोक सुन है करता कै। राज मै राज जोग मह जोगी तप मै तपी स्वर्ग मै है भोगी। त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख काक अंत न पाया। जा की लीला कीमित नाहे सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म कह जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत। समित ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम त्यावै से। कह गुण मैं जा को परमाए जन्म रहे फिर आवै जाए। ऊच नीच तिसके स्थान जय सा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जा कह रंग नाना पे करे एक रंग। नाना विद की विस्तार प्रभ नसी कंकार। नाना चलत करे खनमाहे पूर रहो पूरन सब ठाए। नाना विद करवंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे अगाश पताल नाम के तारे सगलाकार। नाम के तारे प्रिया सब भवन नाम कै संग उदरे सुन सरवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए।
रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब महेशवाणी, सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बजाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरु ते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जा के हृदय प्रवेश, सत निरत बुझे जे कोई नाम, जपत ताकी गत होए, आप सत किया सब सत वापे जाने, अपनी गत अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सुकर्ण हार, अवरना भोज करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस भावे सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पै बिस्माद, जिन बुझया तिस आ गया स्वाद, प्रभ कै रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख कटनहार, जा कै संग उतरे संसार, जन का सेवक सो बड़ भागी, जन कै संग एक लिवरागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे, सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसे पे सच, अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्नहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यावनहार, आप सत सत सवधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रवक्ता, सुरत सत सत जसनता, भुजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जनमान्या, कन करावन तिन मोल पछानिया, जाकर हृदय विश्वास प्रवाया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निरपो होए वसाना, जिसते उपजया तिस माहे समाना, वस्त माहे ले वस्त गड़ाई, ताको पहन ना कहना जाई, बुझे बुंजन हार बबेक, नारायण मिले नानक वेक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मरीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रभ पालनहारा, सेवकी राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक, सो सेवक सा सा समारे, अपने जन का परदा ढाक है, अपने सेवकी सरपुर राख है, अपने दास को दे वड़ियाई,

0: पूरा रहो प्रभ व्याप अनक विस्तार एक ते भय एक राध प्रस्त गई मन तरंतर एक प्रवरता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरद पव आया प्रयाता सनाए नानक की प्रवेंती अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जाचक जन जाच प्रवधान कर कृपा देवो हर
1: जन जाचे प्रवधान कर कृपा देवो हर नाम संत जना की मांगो तूर पार ब्रह्म सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सा सा प्रभ तुम्हें त्यावो चन कम सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की ने नीत एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ के दृढ़ मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाक्या से जंत्र तान है पूर्ण पुरु नहीं डोला नए सो पर परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग परे सरनान सब त्याग अंतर पर गान दिल विलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रतै सुख होए सेवके मनसा पूरी पाई सतगुर ते निर्मल मत लई जानक आओ प्रभु दयाल सेवकी नु सदा निहाल बंधन काट जन कहो प्रभु हो दयाल सेवकी नु सदा निहाल बंधन काट मोह जन पया जन्म मरण दू परम गया शपुनी सरदा सपूरी राव रिया सत्संग हजूरी जिसका सतन लिया मलाए नान भक्ति नाम सुमाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जे सब कह दिया सो क्यों बिसरे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जगन मिलाखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बहते कांड है जन जन का टूटा गंड है गुरपुरे तदे बजाया प्रापण नानक जानते आया साजन संत करो कामो आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिम सिम सो पावो आप जप हर नाम जपाओ पद भय तरिय संसार बिन भगति तन हो सीसार सब कल्याण सूने नाम बुढ़ जात पाए बसराम सगल दू कहो वनास नान नाम जपो गुमतास जी प्री प्रेम रचाओ मंत्र सुवाओ नेत्रो पेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण तोए पव जना कहे मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उमा कही न जाए नानक रिहा सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वसदा कृपाल नानाथ गोबिंद गोपाल सब कटा करत प्रतपाल आ

फिर जापष्ट पारी जा बे आकार के न दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैरभ के संग मात जा बे सिका वर्ण चैन जापत तब हर शोको के ब्यावत जब आपन आप पर ब्रह्म तमोक शोभत परम आपन खेल आवर्ती जा नानक

तब होवत प्राभ केवल तन ही तब बांध मूत को किसको गनी जावे के अरगम पार तब नरक सुर्ग कहो कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब सिख कहो कठाए जावे आपे आप अपनी जोत रह तब कौ डर कौ कर डर आपन चलता कुरन हार नानक ठाकर अरगम पार अविनाशी सुख अपनासन तन मन को कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रा कहो किशोए जब अवगित अगोचर प्रभ एका तब चित्र गोत के लेखा जब नादन गोचर गाद है तब कौन सुटे कौन बंधन बंद है आपने आप ही चर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरुख पुरुष पतोता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन का निर्वाण तय कौन को मान कौन अभमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल सिद्ध लगद को कीस जय जो स्वरूपी जो संसमावे तय के भू कौन त्रितावे करण ग्रामण करण हार नानक करते का नाय शुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई ताव कायम कवन माय बास मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तय वेद देव कहाँ को चीन जय आपन आप आपुर तारे तो सगन आप सगन कहाँ बेचार है जय आपन ऊचे आपने आप नेरा तय कौन ठाकर गुण गये चेरा बेसम बेसम रह बेसम आद नानक अपनी का जानो आप जय शाल शे पे समाया के ब्यावत माया आप सको आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जय एक एक भवंता तय कौन चिंत के लागे चिंता जय आपन आप आप त्यारा तय कौन कदे कौ सुन आरा बो बेअंत उजते ऊचा नानक आप सको आपे पहुचा जय आप रचो पर पंच आकार ते गुण में कीनू विस्तार पाप पुन ते पई कहावत को नर को सुर बशावत वाल जाल माया जंजाल होमे मोह परम व्यापार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बख्यान आपन खेराव कर देखा खेल संकोच तो नानक कै जय अपगेत भगते आप जय पसरे पसा संत प्रताप दू पा कापे तनी उनकी शोभा उन बने आपे गौत करोज आपे रस पू नर जोग जिस पावे ते साप नाय लावे जे पावे ते खेल खिलावे

आकरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कै दिसार अष्टपादी आप गथे आप सुने हार आप एक आप विस्तार जा तिस भावे त सिष्टो पाए अपने भाने लै समाए तुम तय पै नहीं कुछ होए आपन सूत सब जगत पर होए जाको प्रभु जी आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदसी तत का बेता नानक सगल सी का जेता जी जंतर सब ताके हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे ते कोई न मारे सो मुआ जिस मन हो बिसारे ते तज अवर काम को जाए सब सरेख निरंजन राय जी के जुग जाके सब हाथ अंतर बार जानो साथ गुण दान बेंत पार नान दास सदा बलहार पूर्ण पूरा दयाल सब उपरोत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जा मेरे उभ्या परदपाले जी उन बहु भांत जो जो रचो सोते त्या जे पावे ते लय मलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करण हार नानक एक जानया जन लागा हरे के नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवको सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पै निरवैर अंधन पूजा गुरु के पैर हे लोक सुखी है पर लोक सहले नानक हर प्रभ आपे मिले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो आधार अमर बहन हर के गुण गाओ प्राण धन गाए सुवाओ आठ पैर प्रापे को नेरा मिटे ज्ञान बिसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो हलत पल दो लेव सवार राम नाम तरुतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बस ते साच परिखिया मन तन जा नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह ने बैखे पत मारी एका टेक रखो मन माए नानक बोर न आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे रखना त्याज निरपौ जपै सगल भौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस परा राख है तिस ना ही दुख नाम च मन हो सुचिंता जाए मिटे हंकार तेह जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठंडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदर से चरण कम जाके अनूप सफल दर्श सुंदर अरूप तन सेवा सेव परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसे सोहोत निहाल ताक निकट नावद काल अमर पै

मन बिसराम कोट अपराध, साध संग मिटै संत कृपा तै जम तै छुटै, जाके मस्त करम प्रपाए सासा नानक ते आए। जिस मन बसै सुने लाए प्रीत,

बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी एक ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बहुत जी सहाय वार, श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जे जिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कर नौ निधियावे ताए सब थाई होई सहाय दसवीं पातशाह। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाई होई सहाय दसों पातशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसी सब बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारिया चौ सब जादिया चालिया मुक्तियां अठिया जपिया तपिया शहीद सिंघा सिंघणिया जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई देख अंडट कीता तिना गुरमां प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान तर खालसी सब बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघा सिंघणिया धर्मे सीस दिते बांध बांध कटाए चरखड़िया ते चढ़े आ रहा नाल तन चरवाए उबलदिया देगा विच उबाले गए खोपरिया लोहाइया गुरद्वारे की सेवा संभाली कुरबानिया कीतिया तेरे भाणे नूं मिठा करके मनिया असह ते कहिगा सहार दे शीदो सिकिद के सासवास संग नभाई तरमनी हारिया तिना समूह शहीद सिंघा सिंघणिया की कमाई का ध्यान तर खालसी सब बोलो जी वाहे। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे जी का ध्यान तर खालसी सब बोलो जी वाहे। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तर चरिया देते फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाह। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के इशनान चौंकियां चंडे पुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार। खालसे जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाह। सिखां दा मन नीवा मत उची मादे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामी गुरु गरीब नवास जी पातशाह पांदे सदा सहाज दतार पिता जी ओ श्री ननकाणा साहब होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। नमाणियां दे माण नदाणियां दे ताण ने उट्टियां दे उण आसरां दे आसरा तान श्री गुरु ग्रंथ साहिब च पातशाह जी आप दा कोटान कुर शुकर आप दी पार बख्शे रहमत कृपा दा सदका सरबत दे भले लई पांदी चढ़दी कला समूह संगतां दी सुख शांति वास्ते अते परनेसर ते कालों परिवारां दी चढ़दी कला लई आप दे हजूर शामां दे दीवान सजे सजे दीवानां विच शब चौंकी कीर्तन सोध रह साहिब दे पाठ होए ने परम दाता जी आपने कृपा कीती लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे दरों करों वरसाए भाई कुलदीप सिंह भी हरशन कौर परेसर पवार नूं पोती दी दात भाई भुपिंदर सिंह भी सुरिंदर कौर कालों दे ग्रह विखे दोती दी दात अते भाई हरिंदर पाल सिंह ते बीबी नवलीन कौर दे ग्रह विखे पोतरी दी पुत्री दी दात बख्शिश कीती। बच्ची गुरनाज कौर परनेसर ने जन्म लिया शुकराने वजों अते काका तेजवीर सिंह दी चढ़दी कला लई परिवार ने बख्शियां दातां दा शुकराना करदे होए परिवार दी सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़दी कला कारोबारां दीआं बरकतां गुसकी जिवें नाम दी दात दी जाचना करदिआं अते बच्चिआं दी चढ़दी कला लई शुकराने वजों परिवार वलों अज दे समुचे समागम दी सेवा लई गई दाता जी आओ परिवार वलों शुकराने वजों आप दी इलाही बाणी दे सुखमनी साहिब दे पाठ आरंभ कीते गए संपूर्णता तों परम दाता जी नानक साहिब दी छे पौड़ियां दे जाप होए ने अखर दा वादा कट्टा पुल चौक दी खिमा बख्श करनी पढ़ी सुनी बाणी दा पाप समूह परिवार ते बच्चिआं दे हिरदिआं विच वसाउणा मेहर करनी परिवारों सिर ते मेहर भरिया परिवारों में सुख वरतौना बच्चों के सिर ते मेहर भरिया तकड़ा तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला गुरसिखी जीवन बख्शना परिवारों के कारोबारों की बरकतां प्रेम प्यार अतफाक दातां बख्शिश करनियां गुरु घर की सेवा करन दा इसे तरह उदम बल बख्शिश करते रहना बच्चे गुरनाज कौर ते काका तेजवीर सिंह दे सिर ते मेहर बच्चों गुरसिखी जीवन माता पिता आज्ञाकारी बच्चे देश कौम दे सेवक शुभ गुण उच्च विदाता दीर्घ आजू
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਆਸ਼ਿਰ ਸਰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਣੀਆਂ, ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਫੁੱਲ ਪੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪਵਾਂਗ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਤਕੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਐਸ ਉਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ।

कोट पराद हमारे खंडो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले

मैं कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई अज डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदयावै ताए सब थई हुए सहाय सब थई हुए सहाय दसवां पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज।

कोट इंद्र इंद्रान शाशान गणिज तर पवन महीप सुर नारिया सुर नेत नेत बण त्रिण कहत तौ सर्ब नाम कथ कवन कर्म नाम

जो हमको हर नाम चितारे रहाओ, जा का शब्द सुनत सुख सारे, जा की टहल जमदूत बितारे, जा की तीरक इस मन सदारे, जा कै सिमरन मुख युजलारे। प्रभु

सभं गुरप्रसाद। दर्शन देश जीवन गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, यह बेनती सुन प्रभ मेरे, दे नाम करे अपने चेहरे, अपने शरण रा प्रभ दाते, गुरप्रसाद किन बिरले जाते, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसे मिर चीता, नानक एक करे अरदास, विसरना ही पूर्ण गुणतास, दर्शन प्यासी दिन सुरात, चितवन नरनीत, खोल कपट गुर में लिया, नानकार संग मीत सो कहो टाल गुरु सेविया, एनस सुभाए, दर्शन परस्यां गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, वाहिगुरु साहिब जी बिलावल महला पहला, मैं मन चाओ कणा साच विगासी राम, मोही प्रेम पिर प्रभ अमनासी राम, मैं मन चाओ कणा साज बगासी राम, मोही प्रेम पिर प्रभ अमनासी राम, अवगे तो हर नाथ नाथ तिसे पावे सोथी है, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिया, मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा, हर नाम अंतर वास रहे, पेख पावनी हठ ना जाना, नानक

ਬਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਹਿ ਲਾਉਣੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਪੂਰਨਾ ਮਾਰ ਨਾਥ ਕੀ ਆਏ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉ ਏਕ ਜਾ ਕੋ ਨਦ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲੇ ਵਕਾਰ ਰਹਾਉ ਰਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰਤਾ ਸੋ ਪਹਿੰਦੀ ਸਤਾਨ ਨੀਲੀ ਸਾਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਪਹਿਰਨ ਪਾਰ ਧਿਆਨ ਕਮਰ ਬਾਸਨ ਤੋ ਕਾ ਤਨ ਜੋਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ ਜਿਤ ਪਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਕਾਰ ਹਾਉ ਕੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਨੇ ਸਾਖਦ ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ਤਰਕ ਅਸਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਤਾਤ ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਤ ਸਿਉ ਕਰਵੜ ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ ਜੇ ਚੜਿਆ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਕਾਰ ਹਾਉ ਕੰਦ ਕਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦ ਤੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਤੁਧ ਪਾਪਸੀ ਹੀ ਹੋਰ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਛ ਨ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ ਜੇ ਤ ਸੁੱਤੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਕਾਰ ਹਾਓ ਸ਼੍ਰਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨ ਕੀ ਲਲਤਾ ਅਗਰਵਾ ਤਰਸਾਸ ਆਸਾ ਤੀਰ ਕਾ ਮੋਟਿਕਾ ਤਿਰ ਕਰ ਮਥ ਵਗਾਸ ਓਤ ਮਦੀ ਸਰਣਾਣਾ ਸਚ ਨਾਮ ਗੁਣ ਸਾਸ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜੇ ਸੋ ਵੈਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕੂੜੇ ਕੂੜਾ ਜੋ ਰਹਾਉ ਪੂਜ ਲਗੇ ਪੀਰ ਆਖੀਐ ਸਭ ਮਿਲੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਉ ਸਦਾਏ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਰ ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭਾ ਪੂਜ ਖਵਾਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤਿਨ ਮੇੜ ਨ ਸਕੇ ਕੋਏ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਾਮੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਏ ਖੰਡ ਸਦਾ ਸਸ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਖੇਰ ਲਾਈਏ ਤਾਜਿਓ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਜਲੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਿਆਂ ਨਾ ਹੋਏ ਰੋਏ ਜਲੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਿਆ ਰੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਦਰ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵਿਥਰੈ ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਚੂਰ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵਿਥਰੈ ਅਵਗੁਣਵੰਤੀ ਚੂਰ ਜੇ ਲੋੜੇ ਵਰ ਕਾ ਮਣੀ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਪਰਕੂਰ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਪਰਕੂਰ ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੋਲੜਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪਰ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਪੂਰੇ ਤਖ਼ਤ ਡੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੈ ਪਾਈਏ ਸਾਚ ਤੋਰ ਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰਸਾਲ ਬਿਨ ਪੌੜੀ ਗੜ ਕਿਉਂ ਚੜੋ ਗੁਰ ਹਰ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਤੁਲ ਹਰ ਨਾਉ ਗੁਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਬੋਇਥ ਗੁਰ ਤੀਰ ਦਰਿਆਉ ਜੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਉਜਲੀ ਸਾਸਾ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਪੂਰੋ ਪੂਰੋ ਆਖੀਐ ਪੂਰੇ ਤਖ਼ਤ ਨਿਵਾਸ ਪੂਰੇ ਥਾਨ ਸਾਵਣੈ ਪੂਰੇ ਆਨਰਾਜ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਾਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ ਬਲਸਰਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਸਭ ਸਾ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਜੋਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ ਰਹਾਉ ਜਾਏ ਪੁਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ ਬੇਰ ਸਾਲੂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਦਾਤ
केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप राम केते जात हजात। सच मिले सच उपजाय सच में सास माए, सुरत होए पति युग वै गुर बहिनी पौखाए। नानक सच्चा पातशाह आपे ले मलाए, सिरा महला पहला। पली सरी जय उबरी हो मैं मुई कराओ, दूर लगे पर चाक सा चक्री सतगुरु का वैसा। कल्प त्यागी बाद सचावे परवा, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निर्भो क्यों थिया, गुरमुख सब समाए रहो के ता आखण आखी है। आखण तोड़ना होए मंगण वाले केतड़े, दाता एको सोए जिसके जी प्राण है मन वस्या सुहोए। जग सुपना बाजी बणी खेन में खेल खलाए, संजोगी मिले कसे वे जोगी उठ जाए। जित पाना सोती है अवन करना जाए, गुरमुख वस्त वसाही है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुरपुरे सबाज, नानक वत पछाण सी सासो दा जिस पास। सिरा महला पहला। ताद मिले तो फन ताद को सिवती सिव समाए, लाल गुलाल गहबरा सचा रंग चढ़ाओ। साज मिले संतोखी हर जापे के पाए, पाई रे संजना की रेण संसभा गुर पाइये मोत पदार्थ तेन रहाओ। ऊचो थान सहामना उपर मैल मरार, साज करनी दे पाइये दर कर मैल प्यार। गुरु मन समझाइए आत्मनाम विचार, त्रिबित करम कमाइए आ संदेसा होए। क्यों गुर बिन त्रिगुण सुरसी सहज मिले सुख होए, निरकर मैल पछाणिए निर करे मल तोहे। बिन गुर मैल न उतर है बिन हर क्यों करवास, एको शब्द विचारिए अवर त्यागे आस। नानक देख दिखाइए हो सद बलहारे जास। सिरा महला पहला। त्रिग जीवन दोहा गणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों ऐने कै ऐनिस केर टै पाए। बिन शब्दे सुख ना थिए पर बिन दूर न जाए मुंदे, पर बिन क्या शिंगार। दार कर टोई ना लै दरगे झूठ खवार, पर हाओ आपस जान न भूली सच्चा बड़ कर साण। पहला धरती साधकै सच नाम दे दान, नौन दुबजे नामे करम पवे निशान। गुर को जान जानी क्या ते चाज हछार, अंदले नाम वसारिया मन मोह अंध गुबार। आवन जान न चुकी मर्जन में होए खवार, चंचल मेल अंगाया कुंगु मां सदूर। चोवा चंदन बौकन पाना नाल कपूर, जे तन कंत न पावे ता सब डंबर कूड़। सब रस भोगन बाद है सब शिंगार विकार, जब लग शब्द न पेदी है क्यों सो है गुरुद्वार। नानक तन सुहागणी जिन सह नाल प्यार। सिरा महला पहला। सुनी दे डरावनी जज विचों जाए, पाए बलंदी विजवे तून निकसियो काए। पंचे रुने दो पणे बिनसे दूजे पाए, मूड़े राम जपो गुण सार। हमे ममता मोनी सा मुठी हंकार, हाओ जिनी नाम वसारिया कूड़ी दूजी कारे लग। दुबदा लागे पज मुए अंदर तिहना अग, गोरा खिसे उबरे हुर मुठी चंदे जा ठग। मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर वरोध, तंदा थका हो मुई ममता माया क्रोध। कर्म मिले सच पाइए गुरमुख सदा निरोध, सची करे सच मिले गुरमुख पले पाए। सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए, नानक दर प्रदान सो दरगे पैदा जाए। सिरा महला पहला।
तन जल बल माटी पया मन माया मोह मनोर औगण फिर लागो पै कूर्व जावे थोर। बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रह शब्द तरो चित लाए जिन गुरमुख न मन बूझिया मर जन्मे आवे जाहि रहाउ। तां सुचा सो आखिया जिन में साचा नाउ पैस रति द्योरी जे वासा सवाओ सची नर निहाली है बौन न पावे ताओ। साचे ते पवना पया पवने ते जल होए जल ते त्रिपण साजया गड़ गड़ जोत समोए निर्मल मैला ना थिए शबर ते पात होए। ए मन सा संतोखया नदरे करे ते समाए पंच भूत सज पैर ते जोत सची मन माए। नानक औगण विसरै गुर आखे पत ताए सिरा महला पहला। नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार एक आवे एक जावे पूर परे हंकार। मन हटमती बुढ़ी है गुरम सच सुतार गुर बिन क्यों तरिये सुख होए। ज्यो पावे तो राख तो मैं वरन दूजा कोई रहाओ आगे देखो डो जलै पाछे हरे हो अंगूर। जेते उपजै तिस्ते बिरस काट कट सच पर पूर आपे मेल मलावे ही सच मैल हदूर। सा सा तो संभला कदे न विसारे हो जो जो सह मन वसै गुरम अमर प्यो। मन तन तेरा तू तनी गर्भ नवार समय हो जेने जग तो पाया त्रिपण कर आकार। गुरमुख जानन जानी है मन मुख मुग्ध गुबार। कड़ गड़ जो सरंतरी बूझे गुरम सार गुरम जिन जाने गुरम जिनी जानिया मन मुख मुग्ध गुबार। काड़ का जो नरंतरी बुझे गुरम सार गुरम जिनी जानिया तिन की चे सबास। गुरमुख चानन जानिए मन मुख मुग्ध गवार। काड़ काड़ जोत निरंतरी बूझे गुरम सार गुरम जिनी जानिया तिन की चे सबास। सचे सेती रल मिले सचे गुण प्रगास नान नाम संतोखिया जियो पिंड प्रभ पास सिरा महला पहला। सुन मन मित्र प्यारे आ मेल वेला है ए जब लग जो मन सास है तब लग ता ए तन दे। बिन गुण कामना वीटा टेरी तन खे मेरे मन लैला कर जाए गुरम नाम सलाइए हो मैंने भी पाए रहाओ। सुन सुन गंडन गंडिया ले पड़ बूझे पार त्रिनयन सगली हो मेरो वकार। ओवे प्रवाह तोलवा गुरम की मसार लख सियाम लख सियाण बजे करी लख सो प्रीत मलाब। बिन संग सा ना थरा पिए बिना में दो संताप हर जप जीड़े छुटी गुरम जी ने आप। तन मन गुर पै बेचया मन दिया सिर नाल त्रेपमन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल। गुरम मेल मिलाया नान सुपरा आसरा महला पहला। मरने की चिंता नहीं जीवन के नियास तू सर्ब जिया पर पा ली लेखे सा घराज। गुरम अंतर अंतर गुरम तू वसै जो पावे त्यों नर जा जीरे राम जोत मन मान। अंतर लागी जल बुझी पाया गुरम ज्ञान रहाओ अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संग उतार। मोया जित कर जाई है ते जीवन मन मार अनहसा सहावण पाइये गुर विचार अन बाणी पाइये ते हमें होए बनास। सतगुर से वे अपना सतगुर बाणे तास काड़ दर गए पहनाइया मुकर नाम नवास।
जय देखा त्रै वरै शिव शक्ति का मेल, त्रै गुण बंदी द्योरी जो आया जग सों खेल। वे जोगी दुख विचड़े मन मुलै न मेल, मन बरागी कर वसे सह बराता होए। ज्ञान महारस भोग वै बौड़ भोग ना होए, नानक ए मन मार मेल भी फिर दुख ना होए। श्राम महला पहला, नानक ए मन मार मेल भी दुख फिर दुख ना होए। श्राम महला पहला, ए मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लबान, शौन पीजे सागता दुर्मताम जान। साधु सतगुरु जे मिलह ता पाई गुणी निदान, मरे हो मैं छोड़ गमान। हर गुर सर्वस्थेव तो पावे दरगह मां रहाओ। राम नाम जप दिनस रात, गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगण है, संत सभा मिल ज्ञान। नित ऐन सर प्रभ सेवे आसत गुर दिया नाम, कूकर कूर गमाई है गुर निंदा पजे पहचान। पर मैं भूला दो करो जब मार करे खुलहान, मन मुख न पाई है गुरमुख सो सबान। ऐथे तंद पटाई है सज लिख परवान, हर सजन गुर सेवदा गुर करनी प्रधान। नानक नाम न विसरे करम सचा निसान, करम सचे निसान। साह महला पहला, एक तिल प्यारा बिसरे रोग वड़ा मन माहे, क्यों दरगे पत पाई है जा हर न वसे मन माए। गुर मिलिया सो पाइये अगन मरे गुण माए, मारे अन असर गुण सार खेन पल। एक जिन खेन पल नाम न विसर है, ते जन विले संसार हाओ। ज्योति ज्योत मलाई है, सुरती सुरत संजोग, हिंसा हिंसाओं में गात गए ना ही सहसा सोग। गौरमुख जिस हर मन वस है, ते मेले गो संजो काया काम जे करी भोगे भोगण हार। ते स्यों न्यों न की चाई जो दिस चलण हार, ते स्यों न्यों न की जाई जो दिस चलण हार। गुरमुरे सुहागणी सो प्रभ सेज पतार, चारे अगन वार मर गुरमुख हर जल पाए। अंतर कम प्रगासियाय, अमर प्रया गाए नान सतगुर मीत कर। सज पावे दरगह जाए, सिरा महला पहला। हर हर जपो प्यारिया, गुरमत ले हर बोल। मन सच कष्टी लाई है तुरिये पूरे तोल, केमत किने न पाई है रिद मानक मोल। अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाए, साध संगत साध गुर पाई है एने सब सलाह रहाओ। सच वकर सच तन रास लै पाई है गुर प्रगास, जो अगर मरे जल पाई है त्यों त्रिना दास अंदाज। जम दान लगी इं पौजल तरे तरास, गुरमुख कूड़ न पावे सर ते सज पाए। साग सज न पावे कूड़े कूड़ी पाए, सच रते गुर मेलिया सचे सा समाए। मन में मानक लाल नाम रत पदारत हीर, सच वकरता नाम है कट कट गैर गंभीर। नानक गुरम पाई है दया करे हर हिसरा महला पहला। पर मैं पाए न विज वै जय पाए दे संतर देस, अंतर मैल न उतरे त्रिक जीवन त्रिक भेस। और किते भगत न होवे बिन सतगुर के उपदेश, मारे गुरमुख नवार गुर का कहया मन वसे हो मैं तृष्णा मार रहाओ। मन मानक निर्मोल है राम नाम पद पाए, मिल सत संगत हर पाई है गुरमुख कर ले बुलाए। आप गया सुख पाया मिल सले सल समाए, जन हर हर नाम न चेत्यो सो औगण आवे जाए। जिस सतगुर पुरख न पेट्यो सो पौजल पचे पचाए, मानक जो निर्मोल है ओ कोडी बदले जाए। जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंघी है दरगे पत परवान। नानक ते मुख उजलै तुन उपजै शब्द निशान। सिरा महला पहला,
वणज करो वणजारियो वखर लियो समाल तैसी वस्त वसाई है जैसी निभे नाल अगे शास जान लैसी वस समाल भाई रे राम कहो चित लाए हार जस वखर लै चलो सौ देखै पत आए रहाओ जिन्ना रास न सच है क्यों तिना सुगोए खोटे बणज बणजया मंत्र खोटा होए फाही फते मिर ज्यो तू करो निरोए खोटे पोते ना पवै तिन हर गुर दस न होए खोटे जात न पत है खोड़ न सी जिस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत कोए नानक मन समझाइए गुर के शिव सलाह ना राम नाम रंग रते पार न परम तिना हर जबला अगला निर्भो हर मन मासरा महला पहला कर दूजा तर जो बन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार पबन केरे पत ज्यो टुल टुल जुम्मन हार रंग मन लै प्यारे आ जा जो बन न होला दिन थोड़े थके प्या पराना चोला रहाओ सजन मेरे रंग ले जाए सुतेजरान अंबी वन्या डोमनी रोआ चीनी बाण की ना सुनोई गोरी है की ना सुने ही गोरी है आपन कन्नी सोए लगी आवे सौरे नेत ना पैया होए नान सुती पैये जानवर ती सन गुणा गवाही गंठड़ी अवगण चले बन सरा महला पहला कर दूजा आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रता मेरा साहिब रावरे भरपूर हाओ आपे माछी माछली आपे पानी जाल आपे जाल मनकला आपे अंदर लाल आपे बहु बेद रंगला सखिये मेरा लाल नित्रवे सुहागणी देख हमारा हाल पण नान बेंती तू सरवर तू हंसा कौल तू है कविया तू है आपे वे कवगस सराग मल्ला पहला करती जा ए तन धरती बीज कर्मा करो सल अपाओ सारंग पाणी ए तन धरती बीज कर्मा करो सल अपाओ पाणी सारंग पाणी मन करसान हर दे जमाए लायो पावस पद निर्बाणी काहे गर्भ मुड़े माया पेत सुतो सगल कालात्र माता तेरो होए ना अंत सकाया रहाओ बिखे बगार दुष्ट किरखा करे नता जे आत्मे होए त्याई जप तप संयम हो जब राखे कमल विकसे मद आसमाए बी सप्ताह रो बासरो संग रह तीन घोड़ा निकाल सारे दस अठार मैं परम्परो चीने कह नानक एक तारे सिरा महला पहला कर तेजा अमल कर धरती बीज शब्दो कर सच की आव निदे पानी होए करसान मन जमाए लै पिस्त जोज कमूड़े ए बजाणी मात जान सगली पाया माल के माने रूप की शोभा इन बेदी जन्म गवाया रहाओ ऐब तन चिकड़ो ए मन मीद को कमल की सार ने मूल पाई पौरस्तार ने पाख्या बोले क्यों बूझे जा ना बजाई आखण सुनना पौन की बाणी ये मन रत्ता माया खसमी नदर दिले पसंद है जिन करे कते आया ती कर रखे पांच कर साथी नौ स्थान मत कट जाई नानक आखे रा पै चलना माल तन कि तू तू संजाई सिरा महला पहला कर पहला सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारो आप खा दिन बंद रहाई तस जनहारो मरना मुला मरना भी करतारो तरन डरना रहाओ ता तो मुला ता तो काजी जाने नाम खदाई
जय बहु तेरा पढ़िया हुआ को रह न परिये पाई सोई काजी जिनाब तजया एक नाम किया आधारो है भी हो सी जाय न जासी सच्चा सी नहारो पांच वक्त नवाज गुजारे पढ़े कते बकराणा नानक आखे गोरस दे रे हो पीना खाना सिरा महला पहला कर चौथा एक सवान दो सवानी नाल पनके पौके सदा ब्याल कूर छुरा मूठा करदार तान गुरु प्रह करदार

काल तेरा एक नाम तारे संसार मैं यह आस ए हो आधारा ओ मुख निंदा खंद रात पर कजो ही नी सनात काम क्रोध तन वसे चंडाल तान करूप रहा करता रफाही सुरत मलोकी वेस होठ गवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता पार तान करूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर हों क्या मोदे संतुष्ट चोर नानक नीच कहे बेचार तान करूप रहा करतार। सिरा महला पहला कर चौथा एका सुरते ते है जी सुरत भी होना कोई न की जे ही सुरते आए तेरा लेखा को आओ जा काहे जी करे चित्राही लेवे देवे टहल ना पाई रहा तेरे जी जिया का तो होए के तुको सब आवेरो जे तू सब आवेरो तू ओना का तेरे हो असी बोल विगाड़ विगाड़े बोल तू नदरी अंदर तो ले तो जय करनी तै पूरी मत करनी बाजो कटे कट पढ़ो नानक ज्ञानी कैसा होए आ पछाने बूझे सोए।

मैं मछली कैसे अंत लह जा जा देखा तै तै तू है तुझ ते निकसी फूट मरा ना जाना मेओ ना जाना जाले जहां दुख लागे ता तुझे संभाली रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर जो किश करें सो तेरे अधूर तू भरपूर जान्या मैं दूर जो किश करी सो तेरे अधूर तू देखे हम मुकर पाओ तेरे काम न तेरे नाए जेता दे तेता खाओ ब्यादर नाही कैदर जाओ नानक एक कहे अरदास जियो पिंड सब तेरे पास आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मन बयानो आपे वेखे सुने आपे ही कुदर करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई परवानो श्री महला पहला कर चौथा कीता कहां करे कर्म कीता कहां करे मनमान देवन हारे कहा दान पावे दे न दे सोए कीते का क्या कहते का क्या क्या क्या होए कीते का क्या क्या होए आपे सा पावे ते सच अंधा कच कच अंधा कच्चा कच न कच रहाओ जाके रुख बिरख अराओ जे ही ताद तिहा तेन नाओ फुल पाओ फल खिया पाए आप बीज आपे ही खाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंध कच्चा विच राज मत लोनी फिका सा नानक आणिया वेरास विण नावे नाही सबासु श्री राम महला पहला कर पंजवा अशल शलाई न शलै न काओ गटारा कर कसक ज्यों साहिब राखे त्यों रवै इस लोभी का जियो टल पले बिन तेल दीवा क्यों जले रहाओ पोथी प्राण कमाई पवटी ए तन पाई है सज बूझण आण जलाई है ए तेल दीवा इं जले कर चाण साहब तो मिले रहाओ ए तन लागे बाणिया सुख होवे सेव कमाणिया सब दुनिया आमने जानिया बे दुनिया सेव कमाई है वेच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई है कहो नानक बाह लुड़ाई है सिरा महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हो सतगुर से भी अपना एक मन एक चित पाए सतगुरु मन कामना तीर्थ है जिन्हों दे बजाए मन दया वर भावना जो छे सो वर पाए ना त्याय ना मंगिया ना मैं सह संभाए मन मेरे हर रस चाख तिग जाए जिन्हें गुरमा चाख्या सहजे रहे समाए राहो जिन्नी सतगुर सेव्या तिन्नी पाया नाम निदान अंतर हर रस रव रहा चुका मन अम्बान हिरदय कमल प्रगासिया लागा साहे ध्यान मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना से बिरले संसार होमे ममता मार कह रख्या उतार उतर के बरा निज नामे लगा प्यार से सुखिया चौ जोगे जिन्हा नाम खोटे अपार गुर मिलिया नाम पाई है चुक मोह प्यास हर सिति मन रब रिया करी माए उदार जिन हर का साधन साध आया तिन बलहारे जास नान नरी पाईए सच नाम गुणदास सिरा महला तेजा बहु बेकर परमाइए मन हृदय कपट कंबाए हर का महल न पावे मर विस्ता माए समाए मन रे ग्रही मैं उदास सत्संग करनी जो सो करे गुरमोहे प्रगास रहाओ गुर का शब्द मन जीतया गत मुक्त करे मैं पाए हर का नाम त्याई है सत्संगत मेल मलाए जे लख स्त्रियां भोग करे नावखंड राज कमाए बिन सतगुर सुख न पावे फिर वे जो नहीं पाए हर हर का हर हर कंठ जिने पैरिया गुरचरणी चलाए तिना पिछे रिद सिद फिरे उन्हां तिल ना थमाए
जो प्रपावे सो थी अवर न करना जाए जनन जीवे नाम लहर देव सहस भाई सिरा महला तीजा कर पहला जैसी की सरकार है तिसी का सब को गुरमकार कमावनी सकर प्रगट हो अंतर जिसके सच सचे सची सोए साच मिले से न बिछड़े तेन कर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर न कोय सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मला भा होए रहाओ साच मिले सो मेरा है जिसनू आपे ले मलाए दूजे पाए को ना मिले फिर आवे जाए सामय एक वरदा एक हो रहा संभाए जिनो आप दयाल हो सुगुरमन नाम संभाए इस पढ़ पर पंडित जोत की बात कड़े विचार मत बुद्ध पवी न बूझे अंतर लो वकार लख चौरासी परम देह पर भो खवार पूर्व लिखा कमाउना कोई न मेटन हार सतगुरु सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए शब्द मिले ता हर मिले सेवा पवे सब ताए पास परसे आ पास होए जो तेजो समाए जिनको पूर्व लेके आ तिन सतगुर मिले आए मन भुखा भुखा मत करे मतों करे पकार लाख चौरासी जिन श्री सबसे दे आधार लाख चौरासी जिन श्री सबसे दे आधार निर्मो निरपोसा दयाल है सबना करदा सार नान गुरम बूझी है भाई मो दवास राम अल्लाह तीजा जिन्हें सुन के मनिया तिना निरकरवास गुरमति सलाह सच हर पाया गुणदास शबर तैसे निर्मल है हो सद बलहार एजाज हिरदय जिनके हर वसै तिदगढ़ है प्रगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिन को लिखिया से गुरम रहे लिवलाए रहाओ हर संतो देखो निरकर निकट वसे भरपूर गुरम जिन्हें पछाणे आ से देखे सदा दूर जिन गुण तिन सद मन वसै औ गुणवंत आदूर मानव गुण ते बाहर है बैनावे मरदे चूर जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्याया रसोए अंदन भगती रते आ मन ता निर्मल होए कूड़ा रंग कसंभ का बिंस जाए दुख रोए जिस अंदर नाम प्रगास है ओ सदा सदा थिर होए ए जन पदार्थ पाए के नाम चेते लिवलाए पा खिसिया रहना नहीं आगे ठोर न पाए ओ वेड़ा हाथ न आवई अंध गया पहताए जे नगरे सो भरे हसे ते लिवलाए देखा देखी सब करे मन मोह न पाए जिन सतगुर जिन गुरम हिरदा शुद्ध है सेवा पई तिन थाए हर गुण गावे हर ने पड़े हर गुण गाए समाए नान तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए सिरा महला तेजा जिन एक मन नाम त्याया गुरमति विचार तिन कह मुख सादि उजलै ते सचे दरबार ओ अमर पीवे सदा दा सचे नाय प्यार भाई दे गुरम सदा पातोए हर हर सा ते आई है मलहोमे कड्डे तोए रहाओ मन मुख नाम न ना जानी बिन नामे पाते जाए शब्द सा न आयो दूजे लागे दूजे पाए विष्टा के कीड़े पविच विष्टा से विष्टा माए समाए तिनका जन सबला जो चले सगुर पाए कोले उधारे अपना तन जने दी माए हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए जिन्हें गुरमा नाम ते आया विचों आप गवाए वो अंदरों बारों निर्मल है सचे सा समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर ते आए सिरा महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुरपुछ करे व्यापार हर नाम सलान सदा सदा वकर नाम हदार गुरपुरे हर नाम दड़ाया हर भगता तोट भंडार पाई दे इस मन को समझाए ये मन आस क्या करे गुरम नाम ते आए रहाओ
हर भगत हर का प्यार है, जो गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत न होवे दुबदा बोल खुवार, सो जन रलाया न रलाय जिस अंतर बे विचार, सो सेवक राखी है जो राखे उर तार, मन दा सो पे आगे तरे होमे विचो मार, तन गुरमुख सो परवान है जे कदे न आवे हार, कर मिले ता पाई है वेण कर में पाया न जाए, लग चरासी तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए, नानक गुरमर पाया सदार नाम समाए सरा महला तीजा, सुख सागर हर नाम है गुरमु पाया जाए, अंदर नाम त्याई है सहजे नाम संभाए, अंदर रचे हर सचा स्यो रसना हर गुण गाए, पाई रहे जग दुखिया दूजे पाए, गुरसन आई सुख लाए, अंधे नाम ते आए रहाओ, साचे मैल न लाग गई मन निर्मल हर ते आए, गुरमशव पछाणिए हरे अमृत नाम समाए, गुर ज्ञान प्रचन बिलाया अज्ञान दे राजाए, मन मैले मल पर मैं तिना बकार, बिन शब्द मैल न उतर मर जमे होए खबार, तातर बाजी तातर बाजी पलच रहे नार वार न पार, गुरमुख जा पता समी हर के नाम प्यार, गुरमसा ते आई एक नाम करतार, नानक नाम ते आई है सब ना जिया का आधार, सिरा महला तीजा मान मो मोव्या प्या, ब्रैगदा सिना होए शबन चीने सदा दो कर दे पद खोए, हमे गुरमुख होइए नाम रते सुखोए, मेरे मन ऐनिस पूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह पर जले करि मैं उदासा रहाओ, गुरमुख करम कमावे बिकसे हर बराग आनंद, ऐनिस पकरे दे राती होमे मन चेंदा, वड्डे भाग सत संगत पाई हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई हिरदे नाम वसाए, अंतरला नाम मूले विचों आप गवाए, नाम अरदान सतगुरु दिखा लिया हर रस पिया अगाए, जिन किन्ने पाया साध संगती पूरे भाग बराग, मन वो फिरे ना जाने सतगुरु होमे अंदर लाग, कारी सौदा पाई आए अंतर सबत हो, खिन खिन नाम समालिया गुरमुख पावे कोई, नाम निदान अखुट है बड़ पाग प्राप्त होए, मेरे मन तज निंदा हो मैं हंकार, हर जियो सदा ते आए तू गुरमुख कंकार, हाओ गुरमुखों के मुँह जलै गुर शब्दी बेचार, हलत बलसो पाए दे जब जर दे मरार, कारी वे समय पाया गुरशव दी विचार, सतगुर ते जो मोह फेरे मथे तिन काले, आंदे दो कमा दे जो हे जमजाले, सुपन सुख न देखनी बहु चिंता पर जाले, सबना का दाता एक है आपे बख्श करे, सबना का दाता एक है आपे बख्श करे, कहना क्यों ना जानी जे पावे ते दे, नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए, सब नाम का दाता एक है आपे बख्श करे, कहना क्यों न जावे जिस पावे तिस दे, नानक गुरमुख पाइए आपे जाने सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार सत्संग जी, अमृत वेला सच नौ वड्याई विचार दे, अमृत वेला सज दीवाना दी हाजरियां भरिया ने सरबत दे भले ली, जो नित नेम अनुसार सहज पाठ राम ने बाणी दे पाठ सरवण कीते ने, गुरु कृपा करे सब नू चढ़दियां कला बख्शन, अखीरली पंक्ति आपां कोशिश करिए कि इहनू हिरदे च, सभना का दाता एक है आपे बख्श करे, कहना कछु न जावे जिस पावै तिस दे, नानक गुरमु पाइए आपे जाने सो, गुरु कृपा करे सब नू चढ़दियां गला बख्शन। आओ हुण समा है
ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਈ ਸਪਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਜਥਾ ਸਰਵਨਦਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੰਥਿਆ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਲੈਣੀ ਸੰਥਿਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਗੇ 9:30 ਸਵੇਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਆਸਕ ਵਰਦ ਕੀਰਤਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाठ सलोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी सलोक महला पहला
1: बलिहारी गुरे अपने दिओ हाड़ी सदवार

बड़े अपने साजो अपने रचियो नाओ दोए कुदर सजे कर असन डिठू चाओ दाता करता आप तू तुस दे करे पसाओ तू जाने सबसे दिल ऐसा जिंद गवाओ करे असन डिठू चाओ करे असन डिठू चाओ।

ज्ञान गले ठुंडी है कथना करड़ा सार कर मिले ता पाई है और हिकमत हुक्म खुवार पौड़ी नदर क्रिजे अपनी।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की।

देवा पाहन तारियले राम कहत जान कासना तरे रहाओ। तारीले घनका बिन रूप कुबिजा ब्याद अजामल तारियले।

ख्वारे सब मिलेंगे बजे शरण जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को हुआ ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खसम विसारे ते कमजात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनो करूं गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगाश।